0: इथे शिर्क किंवा व्याकरण बाळी पद्धत ज्ञानाची पद्धत पुरावून होईल आज्ञा आणि शिकवलो आपने स्थान लोग माया सुख शांति दूर करने फत खास आजाद करने उलट फल के माँ फत जाए बाबा जी गगन बैठे भक्त वाहे गुरु का खुलासा
1: वाहे जी की फतेह. You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live every weekend, 24 hours a day, from around the world.

0: larga.
1: घर के चरण बचकर मेरे लिए सानुकूलित है, क्योंकि जीवन का प्यार है ना, कहीं कह रहे हैं

स्त्री क्या करे तेरी रहती तेरी बख्शिश सिख जाएगी कोई तेरा जितनी जरूरी है मेरा जो है तेरा कदे जुटे।

अपने ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, पत बिल्कुल लिए कर अपने सगल कल्प नमस्कारो, सगल कल्प नमस्कार।

ते जन कब हूँ नहारे, ते जन कब हूँ नहारे, ताल जो जाने पाशा, ताल जो जाने पाशा, ते जन कब हूँ नहारे, सो कदे ना।

शिवा पर मोह है। सब सर मन से कब हूं न करो शिवा पर मोह है। सब सर मन से कब हूं न करो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिखाओ सिखाओ अपने ही मन को ए लाल चाहो

आनको दान न लागत नीको, आनको दान न लागत नीको, आज भले इन्हीं को दियो, आज भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और

0: इन्हीं के प्रसाद सदान करे, अग आग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे,
1: इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे,
0: इन्हीं के प्रसाद सब विद्यालय, इन्हीं के प्रसाद सब विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे, इन्हीं की कृपा सब शत्रु

लख जन्म सवार दरगे सच्चे दरगाह जाए सच्चा पिर मल्या सच्ची दरगाह जाए सच्चा पिर मल्या सच्ची दरगाह जाए सच्चा पिर मल्या जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए कल्ले आए नानका।

कर्मी सहज न उपजे सहज सहसा न जाय कर्मी सहज न उपजे बिन सहज सहसा न जाय न जाय सहसा किते संजम रहे कर्मी कमार सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाय कित संजम तोता जाय मन तो शब्द लागो आसो रहो चितला कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाई

महाराज कलगीधर पिता ने भाई नंद लाल नूं कहा भाई आ तैनू दसीए भी साडे रूप केड़े केड़े ने केड़े रूप दे तुसीं अज तक दर्शन कीते ने ते केड़े दे दर्शन नहीं कीते ते केड़े दे आद जगाद तुसीं दर्शन करने ने।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें ओ अंब दा होवे, भावें किक्कर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है, भावें टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है। झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें ओ घा दा दुद्ध होवे, ते भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सच्चे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया, एक रूप साडा ओ है जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे। ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रिहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकदा, कोई उस नूं वेख नहीं सकदा। वेखण अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकदा। इस करके इस गुण दी पहचान होनी मुश्किल है क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत के। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकदे।

गुण आप जी ने कथन कीता, दूजा रूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर जितने अखर आए ने ना, जिन्हिया लगा मात्रा लिखिया गई ने, ए मेरे अंग ने। भाई नंद लाल जी, दूजा रूप साडा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है, जेड़ा पहली पातशाही तो लैके दस पातशाहियां तक समाया है, लबा लब भरिया होया, हरेक खजाना इस दे अंदर है। इस नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल गुरु मनना, बड़े अदब दे नाल इस नूं पढ़ना, बड़ी सुचमता ते पवित्रता रख के हाजरा हजूर जहरा जहूर जानना, जिवें साडे तो तुसी भै खांदे हो ना, इसे तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो भै खाना सिखो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जाहर गुरु, जिन्ने इस दे अंग ने ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे, ओ साडे अंग समझो।

जिन्हें साडे बचन सुनने होण, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा शब्द पढ़े, नाल नाल विचार करे ते साडे नाल परपख तौर ते ओ गल्लां कर रहा होएगा, असी उस नूं उसे शब्द दे विचों उस दे दिमाग दे अंदर उस शब्द दा जवाब नाल नाल दे जावांगे। जदों प्यार नाल बाणी पढ़ी दी है ना, ते अर्थ अपने आप समझ आउंदे जांदे ने, क्योंकि साहिब सच्चे पातशाह महाराज नालों नाल उस नूं समझाउंदा चला जांदा है। गरीब नूं अज कहिंदे जो मेरे नाल बात करनी चाहे ना, वो प्रेम नाल बाणी पढ़े ते विचार करे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज।

सचे पातशाह ने ए सौ पा दिती है गुरु के सिखा ते किसे दे अंक ना समझ ली, किसे दे लिखी हुई बाणी ना समझ ली। मैं आप कह रहा कि ए गुरु ग्रंथ साहब मेरा रूप है, मेरा रूप ग्रंथ जी जान, इस दे विच किसे किस्म दा भेद ना जानी भी कोई किताब है जां कोई इलहाम होई हुई बाणी है जां कोई मार्गदर्शन वाली बाणी है, ए गुरु है। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किन्ना अदब गुरु ग्रंथ साहब नूं दिता, ते साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं मनन दा अकीदा सिख दा दृढ़ करा दिता। गुरसिख गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं ही मन्नेगा, इस नूं ही नमस्कार करेगा, मत्था टेकेगा। साहब सचे पातशाह महाराज ने पवित्र वचन कीते ते कहंदे हन

साहब जी महाराज के चरणा च मथा टेकिया, पंज पैसे श्री फल गरीब नवाज ने परिक्रमा कीतियां ते साहब सचे पातशाह महाराज आसन ते विराजमान हो गए। वेखद्या वेखद्या सिख बैराग अंदर ने बैराग दा समा बनिया होया है, ए विछोड़ा सहया ना जाए। भाई दया सिंह आए चरण पकड़े साहब जी दे ते चरण हाथ विच ना आए ते वैराग दे अंदर आंसू गिर पए। महाराज ए कड़ा रूप है भाई दया सिंह, ए जड़ा तू वेखना ए साडा वास्तव स्वरूप नहीं, वास्तव स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर समा गया। इस करके साडे तैनू चरण नजर आ रहे ने, हाथ ते नहीं आए तेरे च, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणी लग। उस तों बाद भाई दया सिंह जी ने उठ के मथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकिया, सारी सिख संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं मथा टेकिया। वेखद्या वेखद्या साहिब जी ज्योति जोत समा गए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने ਇਹ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸਨ ਸਰਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਈ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਿਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਗਿਆ।

महाराज जी वाणी चाकते हैं, चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे, चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को जन्म मरण ते डरे सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक टांके बल बल जासा। बाबा जी बाणी च आखदे हन नाव रूप भयो साध संग, नाव रूप भयो साध संग, केंद्र जड़ा साध संगत है ना, ये समझो एक किश्ती दी तरह है कि तुसी एक किश्ती च सवार हो गए हो, नाव मैंने किश्ती, अते जो साध संगत बैठ गया समझ लो किश्ती दे विच बैठ गया है, जो किश्ती उसनू इस जन्म मरण दे पग सागर दे विचों पार कर दे। नाव रूप पयो साध संग, तो इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ने दस्या है कि साधु सानू की रस्ता दसदे हन, की मार्ग दसदे हन। बहुत ही सिंपल जवाब दिता है, बहुत गौर नाल ध्यान नाल सुनो, मन नू जोड़ के हर मार्ग साधु दसिया, साधु ने ए मार्ग दसिया कि जपिए गुरमंत। साधु कहता है गुरु मंत्र जपो, गुरु मंत्र दा जाप करो, साधु ये मार्ग दसते हैं, हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत। सिंपल गल, आसान गल, साधु ने यह नहीं क्या मेरी पूजा करो, ये नहीं क्या कोई मेरा मंत्र जपो, साधु पूर्ण साधु कदे भी ऐसा नहीं करेगा, वो कहेगा गुरु दा मंत्र जपो, गुरु दे नाल जुड़ेगा, प्रपेयर करेगा, समझाएगा, घड़ेगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जिज्ञासु ओह गुरु दे मंत्र दे नाल जोड़ सके, गुरु दे नाल जोड़ सके। इस दे विच नुक्ता समझने वाला है, साधु ने ए नहीं आख्या कि मेरा मंत्र जपो, कहिंदे गुरु दा मंत्र जपो। साध साधु हर मार्ग साधु दसिया कि जपिए गुरमंत। हुण इत्थे एक विचार है थोड़ी जी जो समझण वाली है, गुरु मंत्र ओही जपेगा जिसनू गुरु मंत्र मिलिया है, जिसनू गुरु मंत्र मिलिया नहीं है वो गुरु मंत्र जपण दा अधिकारी नहीं हुंदा, उसनू अधिकार नहीं हुंदा।

चले। ले मर्दाने तू साडे बस्तर पर असी वेई नदी विच इशनान कर। मर्दाने ने बस्तर पकड़े हजूर वेई नदी विच प्रवेश करदे हन, चुबी मारदे हन, पर पैरी साध संगत बाहर नहीं निकले। आखो श्री वाह बाबे ने ऐसी चुभी मारी, मर्दाना बड़ा चिर उड़ीकदा रहे। पातशाह हुण बाहर आउंदे हन, हुण पानी विचों बाहर निकलदे, पर हजूर निकले। मर्दाना नदी दे कंडे ते कदे इधर भज्जा जांदा है, बाबा किधर गए हो, कदे इधर भज्जा। दिन चढ़ गया, अजे भी बाबा बाहर।

कीर्तन आशा जी दीवार लगा के कीर्तन की समाप्ति उस उपरंत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की थी सी भी आज दी चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ए भी गुरु दी प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो भी बेनती की थी कि कई प्रेमी कहने लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हुण प्यारी साध संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार का कीर्तन भी पूरा हो तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दीवार दे कीर्तन का भोग पै रहा है सर्वासा पूर्णी आसा जी दीवार तो ये छंद आपा आसा राग

सतगुरु मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जाननी, मन मुखी जन्म गवाया।

सिख लोक सुनावे। कंत न पुछे वातड़ी सुहाग दणावे। चूहा खड ना मावई लग छज वलावे। मंत न होए अठुहिया हथ सप्पी पावे। सरसन ने आगास नू फिर मथे आवे। तुही सराई जरदरू बेमुख पछतावे। तुही

गल बंद रह क्यों कीन न जाने रतन मणि गल बंद रह क्यों कीम न जाने करछी साओ न समले भोजन रस खाने डड्डू चिकड़ वास है कमले ना सियाने नाप कथूरी मिर्ग दे फिरदा हैराने गुजर गोरस वेच के खलसूड़ी आने बेमुख मुलों कुथिया दुख सह जमाने

सुके जावा सावन वन हरियावले सुके जावा सबको सरसा वर्ष दे जूरे जोला सब नारा तुम लावना सबना रात मिलावड़ा चकवी दोरा संख समुंदो सखना रोवे देता राव उच्चन जो पवे मुस्दे फहा त्यों जग अंदर बेमुखा नित उभे सहा त्यों

भूते केरी दोस्ती नित सहसा दिए बेटे पूछन लगिया क्यों पार लंघिए भूते केरी दोस्ती नित सहसा दिए नदी किनारे रुखड़ा विसाहो न किए मृतक नाल विहाई है सुहाग न थीए विस हला हल बीज कह क्यों अम्यो लिए बेमुख सेती पिरहाड़ी

खाए छुट्टड़ होई। मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई। पीड़ लई रस गन्ने छिलछु है न कोई। रंग मजिठो निकले अट लहे न सोई। वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई। काया हंस विछुन्या जिसको न सथोई। बेमुख सुके रुख ज्यों बेमुख सुके रुख ज्यों वेख

कुत्ते हलत मन सुगावे, ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे, यूं चक चुंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे, जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे, वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे,

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो ठेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुर शरण विमुख दुख देख पुन, शरण गए पुनीत पै कलंक लेखी है।

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास त्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे। कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे। सप्पे दूध पिया लिए व्यो मुखों सुटे। सप्पे दूध पिया लिए विहो मुखों सटे। पत्थर पानी रखिए मन हट न घटे। चोआ चंदन पर हरे खरखे पलटे। क्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे। आपन हथी आपनी जड़ आप उपटे। आपन हथी

सिर छार उड़ावे, तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे, निंदक नाम भी होने सत्संग न पावे, मूर्ख सच न जाननी, निंदक

लसन लुकाया ना लुकै बै खाजै कूणे। लसन लुकाया ना लुकै बै खाजै कूणे। काला कंबल उजला क्यों होए साबूणे। डैमू खखर जोछ है दिसे मुह सोने।

कर दे परवासा। थल विच तपन पठियां क्यों लहे प्यासा, सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।